फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर सुन रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, 6 बजने को है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में होगा।
1: 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी

0: मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन की शांति सबसे महंगा गहना है, उसे संभाल के रखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही मिनट में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200, 6:35 पर। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। 7 बजे भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है राजुल अशोक का। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक करण जोहर पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहत नामा, थायराइड की बीमारी और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर लीजा बनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है रामकरण मीणा की। 11 बजे सुनिए राम रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। माफ कीजिएगा, 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशन है दीनानाथ। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्त होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ, स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों पर चर्चा की जा रही है आजकल संगीत सरिता कार्यक्रम में। और श्रोताओ, आप तो जानते ही हैं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: नमस्कार श्रोताओं, पिछले कड़ियों में मैं आपको सुना रही थी कुछ कर्नाटक शैली के रागों के बारे में, जिनके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि कतन कुतूहलम, अमृतवर्षिणी और मंगलम, यानी कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती रागों के बारे में। तो आज से शुरू करते हुए मैं आपको एक ऐसे वाद्यकार और संगीतकार के बारे में परिचय देना चाहती हूँ जो न केवल दक्षिण के केरला प्रांत में एक जाने माने महाराजा थे, बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभदास वंची भूपाल श्री रामवर्म कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति तिरुनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन। इनके पिता राजराज वर्मा थे और माताजी का नाम था महारानी गौरी लक्ष्मीबाई। माँ का छोटी उम्र में ही देहांत होने के वजह से स्वाति तिरुनाल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वीं साल में स्वाति तिरुनाल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियां लिखी, बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियां सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इनमें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदि ताल, देशादि ताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाएं या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाएं, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ, जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि। यह कृति 16 मात्र के आदि ताल में निबद्ध।

0: फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत जो राग वृंदावनी सारंग पर आधारित था अभी आपने सुना। आवाजें थी हेमंती शुक्ला और येसुदास की। कल इसी क्रम में आपको सुनवाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

नमस्कार। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधना फिल्म के इस गाने के साथ। गीता दत्त की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति परख फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

0: तलत महमूद की आवाज़ में आप सुन रहे थे मालिक फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे बेवकूफ़ फिल्म से ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कन्हैया फिल्म के इस गाने के साथ। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

उजाला फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गाने के पहले हम आपको सुनवा रहे थे गूंज उठी शहनाई फिल्म से गाना, जिसके बोल लिखे थे भरत व्यास ने। हमें राही प्यार के कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

हम है राही प्यार के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना सट्टा बाजार फिल्म से, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, बोल है गुलशन बावरा का।

दे के घर आए, घर आकर पछताए।

सारंगा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना, भरत व्यास के बोल, सरदार मलिक का संगीत।

0: सावन फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में गाना प्रेम धवन के बोल, हंसराज बहल का संगीत। इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को

0: स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रूपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू

0: कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और

0: मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जीतना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है। मन पर काई नहीं जमने देती, बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से संवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार, व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बचना ए हसीनो फिल्म के इस गाने के साथ। लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल,

बचना ए हसीनो फिल्म से आप ये सुन रहे थे गाना। इस गाने को लिखा था अन्विता दत्त ने और इसका म्यूजिक विशाल शेखर ने तैयार किया था। इसी जोड़ी का सुनते हैं अगला गाना दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी की आवाज़ में उनके साथ हैं श्रेया घोषाल और साथी।

मन मतवाला क्यों हुआ इसकी तो खबर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा हिंट दे रहा है। कार्यक्रम का अगला गाना बैंड बाजा बारात फिल्म से। श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है सलीम सुलेमान का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किल दिल फिल्म से। अरिजीत सिंह, नेहरा जोशी की आवाजों में शाद अली के बोल हैं और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।
1: आपने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
7: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कल्याण सिंह गायकवाड़ और साथी। पहले सुनते हैं ये लोकगीत, स्वर है कल्याण सिंह गायकवाड़ और किरण सोनवानी का।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति स्वर है कल्याण सिंह गायकवाड़ और साथियों का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज कलाकार थे कल्याण सिंह गायकवाड़ और साथी। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: सबरंग सुनने वाले सभी श्रोतागण स्वीकार करें मीनाक्षी मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज के सबरंग में हम बात करेंगे सपनों की, उन सपनों की जो हर कोई देखता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सपने सिर्फ गहरी नींद में ही आते हैं। सपने तो इंसान खुली आँखों से भी देखता है। उम्र के हर पड़ाव के साथ सपनों के रंग भी बदलते रहते हैं, जैसे सब रंग में आपको रोज़ाना एक नया रंग मिलता है। सपने केवल रात में देखी जाने वाली कल्पनाएं नहीं होती, बल्कि वे इंसान के जीवन को दिशा देने वाली उम्मीदें होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सपना अवश्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, तो कोई अपने परिवार का सहारा बनकर उन्हें खुशियां देना चाहता है। सपने हमें मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य सपने देखना छोड़ दे तो उसके जीवन का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं खो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग दूसरों के सपने को छोटा समझ लेते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का सपना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी गरीब बच्चे का सपना अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हो सकता है, तो किसी किसान का सपना अपने परिवार को सुखी जीवन देना हो सकता है। हमें समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने का अवसर और प्रोत्साहन मिले। किसी के सपने को तोड़ने के बजाय हमें उन्हें

श्रोताओं, सपनों को पूरा करने का रास्ता आसान नहीं होता। इस राह में कई कठिनाइयाँ, असफलताएँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों के प्रति सच्चे होते हैं वे हार नहीं मानते। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई सफल लोगों ने अनेक संघर्षों का सामना किया लेकिन अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे कठिन परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें।

श्रोताओं, आज के समय में कई युवा दूसरों की सफलता देखकर अपने सपने को बदलने लगते हैं या खुद को कमजोर समझने लगते हैं। यह सोच गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता और मंजिल अलग होती है। हमें अपने सपनों की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। समाज को भी युवाओं पर अनावश्यक दबाव डालने की बजाय उनकी रुचि और प्रतिभा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब बच्चों को सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है, तब वे अपने सपने को साकार कर सकते हैं।

तो श्रोताओं, आज के सब रंग से चलते चलते हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, सपने देखिए ज़रूर, लेकिन उन सपनों को देखिए जो हम पूरा कर सकें। ऐसे सपने मत देखिए जिन्हें पूरा करने में हमारी पूरी सोच ही खत्म हो जाए। सपने देखिए जीवन में आगे बढ़ने के, लोगों के एक दूसरे से जुड़ने के, इस भीड़ भरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के, और सपने देखिए अपनी एक दुनिया बसाने की। और साथ ही ये भी कोशिश करिए कि अपने साथ साथ लोगों के सपने को पूरा करने का प्रयास कर सकें, तभी जीवन में सपनों की बात सार्थक होगी। फिलहाल आज के सबरंग में सुनिए ये गीत, और अपनी दोस्त मीनाक्षी को फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिवस।

0: सबरंग कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हो। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जेरिकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है, जिससे खरीफ कार्य प्रभावित ना हो। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे

लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 दिवसीय हज यात्रा के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। हज यात्री आज पूरा दिन अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया कि 1 जून से प्रतिदिन वर्षा की स्थिति और संभावित क्षति की रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करेगी। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत 1 जून को होगा मतदान। और मुख्यमंत्री ने किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वह है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज
1: जरूर,
0: के दौर
1: जरूर।
0: में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इस

0: का उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राई आयोडो थायरोनिन T4।
0: जी
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है, दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथि होती है।
1: ग्रंथि होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो।
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च सोशल मीडिया काफ़ी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब? हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है, ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा। इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा, तो
0: अच्छा
1: ऐसा नहीं है। डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए
0: याराना फिल्म का गाना है,
1: यार।
0: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज़ कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज़ वो किया है
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक

0: आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हों।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बड़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
0: जी
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
1: हाँ,
0: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
1: हाँ
0: है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या-क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है. और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है. काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया. बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं. हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है. अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे
1: हाँ,
0: बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है.
0: निदान
1: इसमें आता है ब्लड. पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का.
0: जी,
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4. TSH वैसा ही रहता है. टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती. इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा.
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे. फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है. हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना. इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है. अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं. हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग. प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है और ये अनिवार्य है.
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा
1: पॉजिटिव,
0: कि आपकी यूनिट के बाहर या कम जो
1: हाँ,
0: होता
1: रेंज के
0: है,
1: बाहर,
0: रेंज के बाहर,
1: हाँ,
0: तो आप क्या मानती हैं उसको?

0: इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
0: अगर
1: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
0: जैसे
1: दिखाई
0: T3
1: देते हैं?
0: और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
1: जी
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
0: हाँ,
1: लेवल क्या है
0: लेवल
1: बीमारी
0: क्या
1: का।
0: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट

0: हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
1: अच्छा
0: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
1: जी,
0: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है मतलब लूज
1: अच्छा
0: मोशंस।
1: जी
0: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
1: जी
0: बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत है।
1: जी
0: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
1: त्वचा
0: होगा,
1: रोग
0: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
1: इसका
0: क्या
1: रूट
0: है।
1: किधर है?
0: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
1: जी
0: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर लें या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
1: जी
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो
1: चिकित्सा
0: चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती है।
0: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है
0: चित्ररेखा।
1: ये,
0: हाँ
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: है।
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लिजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है?
1: हिस्ट्री क्या है इसमें आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे
0: हो जाती
1: घातक
0: है।
1: होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को, मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं,
0: जी
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान
0: गुस्से
1: लाल
0: से।
1: होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है,
0: जी जी
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान,
0: जी
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक,
0: फोबिया।
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है, होती है।

0: क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
1: जी,
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल।
0: फिजिकल, उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना
1: वो सारी
0: फलाना,
1: विषैली चीजें,
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया।
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं,
1: जी।
0: और वहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री,
1: जी।
0: ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का?
0: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटी कैरेक्टर।
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती हैं,
1: जी
0: उनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आगे में, आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखें, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज़ तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा
0: बैजू बावरा।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके। तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना ज़रूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो, ये भी जानना ज़रूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है।
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना।
1: पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा, तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देखकर।
1: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी
0: एक
1: है,
0: इंडिकेशन होता है
1: एक
0: उसमें।
1: इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी
1: आयोडीन
0: मेहनत
1: का
0: करने पे ही वो थक जाता है।
1: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट
0: जी
1: इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी

0: में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है. तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो. थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल. आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा मायूस सा बेचारा, हर एक चीज़ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता. ये सारी चीज़ें उसमें होती. अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है. हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है. और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है. तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ
0: रहा है. सामान्य अवस्था. डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है. तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है.
1: जी. और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका. तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत. क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती. इसमें डाइट का, मतलब आहार का, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है. सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा. साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम. व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है. आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो. सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो
0: मौसमी
1: फल है
0: खाना,
1: वो खाना चाहिए.
0: खाना हो या फल हो, ये खाइए. और पानी, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी. लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा. बिल्कुल नहीं. 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए. इससे जब ज़्यादा पानी पियोगे, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी. आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए, मैं उठा लूँगी. मुझे 10 किलो दे दिया जाए, क्या मैं उठा पाऊँगी?
1: बहुत प्रेशर
0: नहीं.
1: पड़ेगा.
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं. किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है.
1: ओहो,
0: यस,
1: क्या बात.
0: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया. और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा.
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
0: ज़रूर.
1: रखना. और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार.
0: उतना ही.
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें.
0: सबसे पहला चीज़ जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो.
1: जो
0: बड़ी
1: चाइनीज फूड में
0: खतरनाक
1: ज़्यादा
0: है.
1: इस्तेमाल होता है. बिल्कुल सही बोला है.
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए.
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
0: हाँ, कम
1: इतना तो
0: कर
1: खाइए.
0: दीजिए. मैं
1: जी
0: ये भी नहीं बोलूँगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए. अगर नहीं हो रहा है, कम कर दीजिए. क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे, ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा. और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए. मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल
0: कंट्रोल करना शुरू हो जाए. सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना. जैसे ही आपका मन शांत रहेगा,

0: आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है।
1: जी
0: मन
1: जी
0: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
0: एक
1: चलते
0: अच्छा सा
1: चलते।
0: गाना, चलते चलते मैं हूं झुम झुम झुम झुम रू घूमू बन के।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना

सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: मधुरिमा कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दाग दहलवी की लिखी गजल से। स्वर है जसविंदर सिंह का।

0: जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: आइए अब सुनते हैं मीनल जैन के स्वर में ये गीत।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर। सपनों

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा। आइए अब सुनते हैं मेहंदी हसन की आवाज में अहमद फराज की ये गजल।

ये आकाशवाणी रायपुर है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: लीजिए सुनिए ए हरिहरन की आवाज में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: आइए अब सुनते हैं तलत अजीज की आवाज और संगीत से सजी ये गजल।

0: इसी गजल के साथ मधुरिमा कार्यक्रम अब यहाँ संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इबोला को लेकर जारी एसओपी के बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की ओर से भी इबोला संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे, जिसके बाद शाम को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक लेंगे। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का समग्र विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी हो गई है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को 9,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ने कनेक्शन लगाने के नाम पर प्रार्थी से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। वहीं बेमेतरा में एसीबी ने जमीन के बटांकन और खाता विभाजन कर ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी को गिरफ्तार किया है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कोलकाता हरियाणा में दबिश देकर आईपीएल में सट्टा लगवाने वाले 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों के पास से 17 लाख नकदी, 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। अकलतरा पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर खाताधारकों के खातों में फर्जी तरीके से रकम निकालकर 19 लाख रुपये, 21,000 रुपये के गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। गौरतलब है कि पीड़ित खाताधारकों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,80,000 रुपये जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी

0: खातों में कुल मिलाकर अलग अलग अमाउंट की राशि कुल 30 लाख रुपए जमा है, जिसे होल्ड करवाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में नौतपा के पहले दिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, राजनांदगांव समेत 10 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पहली बार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा, यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य विभाग ने हवाई यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। आज नई दिल्ली से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रालय में लेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं, जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया, जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।

0: ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों सो छीलू तुम मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदी वर्णी से लिखा था।

आपकी कसम इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे शब्द, काफ़ी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना?

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज़ में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे को एक दूसरे का अभिवादन किया है, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं, तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की टीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है।

जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा, कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफ़र में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हम सफ़र की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ज़िंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं, और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें

इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं। ताजगी और सुकून से भर देते हैं, बिल्कुल। और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग के ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना? हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली। तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहाँ आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते

लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये ज़रूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहाँ हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है।

और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं, साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूज़िक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिख कर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं साथ ही साथ। एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊँचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ साए साए करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे, और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है मुझे बताएं।

रात कली एक ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना? साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार। आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

बम बम बम। चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह चलना भी एक ऐसी दिशा

क्लींजिंग प्रक्रिया है। मन पर काई नहीं जमने देती, बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार, व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे

0: में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार

0: प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य

0: रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साथ ही नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: चंद धूप अगरबत्ती कौन व हवन सामग्री।
1: धूप स्टिक्स कोन्स

ये आकाशवाणी रायपुर है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी तो
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली है।
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम, देखिए क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना, ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अभी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं। और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना,
1: तब
2: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: तो कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है। अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे वो आप

0: सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी, तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके
1: ओहो,
0: बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें
1: हाँ लिखे ये
0: कि
1: कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है,
0: जी
1: हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही
0: या
1: हैं।
0: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा
1: हाँ,
0: है
1: ऐसे
0: ऐसा।
1: जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा
0: हाँ
1: बहुत बार होता है हमारे अपने
0: बिल्कुल।
1: घर में ही। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं, अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली तो आप
0: हाँ
1: कान की कच्ची हो, इसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर
1: हाँ,
0: भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा
1: अच्छा
0: लगे।
1: लगे।
0: और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: सुनते हैं
0: चलिए
1: ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सनम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास, हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत
1: सारे
0: आ गए हैं।
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने

0: पर्यावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना
1: बिल्कुल
0: चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर
1: दी
0: जरूर दें, उसको
1: बिल्कुल
0: देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी
0: जी
1: है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है? आत्म
0: आत्म
1: सुधार।
0: सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी
1: हाँ,
0: कर
1: अपने
0: सकते
1: घर में
0: हैं।
1: हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से
0: जी
1: लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना
0: जी
1: दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चल रही, दिन भर कूलर दिन भर एसी में हम बैठे
0: जी
1: रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम
0: बिल्कुल
1: पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार
0: जी
1: चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी
0: बिल्कुल
1: लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखे, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं।
0: जी
1: और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो ज़रूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो
1: बिल्कुल
0: आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की
1: बिल्कुल
0: सोचिए।
1: कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है,
0: जी
1: यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से
0: जी
1: अच्छा व्यवहार करेगा।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वही
0: है
1: बात हमारे सामने
0: जी
1: होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें,
0: बहुत
1: है
0: सुंदर
1: ना?
0: सी बात
1: हाँ,
0: लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है,
0: जी
1: फिर मिलते हैं।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
2: और देखिए, एक संदेश है, मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
2: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे,
1: बिल्कुल
2: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
1: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
2: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया, मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
1: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
2: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
1: बिल्कुल।
2: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना मंदाकिनी जी.
1: हाँ बिल्कुल.
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना. तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना.
1: और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है,
0: बिल्कुल.
1: है
0: तो
1: ना.
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं. हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल. राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है. उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं. और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं. वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी.
1: हैं.
0: और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ. उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं.
1: बिल्कुल. उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया.
0: जी. और व्यवसाय शुरू करने से

0: पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो
0: जी
1: राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाने का काम भी किया।
0: जी और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं, तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं, तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था,
0: और
1: लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी
0: जी
1: और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया
0: बिल्कुल। और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है।
1: बिल्कुल।
0: और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड्स 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

झकझक थे। देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

के जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हंसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे

जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम ही जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो ऐसा
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत
1: बिल्कुल,
0: बात
1: वो
0: है।
1: कान की कच्ची है भी नहीं।
0: हाँ
1: और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते हैं।
0: विश्वास कर लेता
1: तो
0: है। तो
1: ऐसा
0: ऐसे,
1: नहीं होना
0: हाँ ऐसे
1: चाहिए।
0: कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं
1: बिल्कुल
0: कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
1: जी। और कान के कच्चे होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो
0: हाँ
1: कैसा है आप अपनी नज़रों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना।
0: सबसे बड़ी
1: कोई
0: बात,
1: दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी है, तो क्यों आप उसके उस पर
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: जी बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: आप
1: बात
0: खुद अच्छे बने, है ना।

0: हरा सोना,
1: बिल्कुल
0: फिर आप दूसरे को परखें, और जब
1: बिल्कुल
0: आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि
1: बिल्कुल
0: आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना, अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है, और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं, और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: पड़ता
1: सबसे पहले
0: है।
1: तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
0: बिल्कुल
1: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
0: डिगा
1: बातों
0: नहीं
1: में
0: सकता।
1: डिगा नहीं सकते जिसे
0: हाँ,
1: कहते, वो
0: मतलब
1: होना
0: अपने
1: चाहिए।
0: किरदार को हमें मजबूत बनाना
1: जी,
0: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला,
1: उथल
0: इधर
1: पुथल
0: इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: नहीं, थाली
0: आपने
1: का
0: कहा
1: बैंगन जिसे कहते हैं वैसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: उधर
1: चाहिए।
0: उसकी बात सुन ली, उधर उसकी
1: जी
0: बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो
1: जी
0: देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं,
1: बिल्कुल
0: ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है,
1: जी
0: ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और
1: जी
0: ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता,
1: जी
0: तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं, और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं, होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए।
0: बहुत
1: हमारी
0: अच्छा,
1: सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी ज़रूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी ज़रूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए। ऐसे
0: मतलब
1: लोग जो होते
0: गोपनीयता जो
1: हैं,
0: बातों की होती है
1: हाँ,
0: दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं,
1: हटा
0: खंडित
1: देते
0: कर
1: हैं,
0: देते
1: मतलब
0: हैं।
1: दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं, और
0: हाँ,
1: अपना अपना
0: मतलब
1: पाने
0: निकाल
1: के लिए,
0: लेते
1: मतलब
0: हैं।
1: निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं,
0: गिरा
1: तो वो
0: देते
1: चीज़
0: हैं,
1: नहीं होनी
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना। आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है, ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते
1: जी,
0: हैं।
1: सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा,
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहाँ ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे, कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे, खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा
1: मौसमी
0: दिए
1: फल
0: जाते थे,
1: थे जो।
0: मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे के इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में
1: हाँ,
0: अक्सर
1: होते
0: होते
1: हैं
0: थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और ये एक रोचकता
0: जी
1: बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता
0: बड़ा
1: है शादी विवाह में,
0: बहुत
1: जब इस
0: अच्छा
1: तरह
0: माहौल
1: की
0: होता था। और
1: छुटपुट मजाक होती
0: जी,
1: है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल
1: पर बड़ी
0: लगाना नहीं
1: सादगी
0: है।
1: से वो जनवासा होता
0: हाँ,
1: था, दिखावटी दिखावट
0: दिखावटी
1: कहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: होता,
1: थी।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी
1: हाँ,
0: वो ही लोग
1: होते थे।
0: होते थे।
1: हाँ
0: और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका
1: बिल्कुल,
0: भुगतान जो
1: वे
0: कहते हैं ना, वो लड़की वालों
1: लड़की
0: को
1: वाले
0: करना
1: ही करते थे।
0: पड़ता
1: हाँ बिल्कुल
0: जी।
1: सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं
1: बिल्कुल
0: सबकी।
1: आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ
0: जी
1: जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की

0: पा रहे थे, हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी कई
1: बिल्कुल, वो
0: बार।
1: अपने हिसाब से देखिए सब लोग
0: हाँ
1: अच्छा ही करते
0: बिल्कुल,
1: थे,
0: और मन से
1: मन
0: व्यवस्था
1: से
0: होती
1: करते
0: थी।
1: थे, और जिसको
0: हाँ
1: कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और वही
0: हाँ
1: एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस
0: बिल्कुल,
1: तरह के भी उनको
0: रूठने
1: सुविधाएं,
0: मनाने की जो
1: हाँ
0: बातें भी बहुत होती थी,
1: बहुत
0: कोई नाराज हो
1: होती
0: जाता था
1: थी
0: उसको मनाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था।
1: और खाने पीने की भी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी।
0: बिल्कुल सही कहा, इसलिए
1: तो
0: फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना
1: संभाल
0: पड़ता था, क्योंकि
1: जी
0: वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते
1: जी
0: थे ना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा
0: हाँ,
1: मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत
0: लेकिन
1: अच्छे
0: हाँ,
1: थे,
0: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
1: जान होते थे। सही
0: एक
1: बात
0: श्रोता
1: है
0: लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा, आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं, बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत
0: कर देते
1: करवाते
0: थे।
1: थे बिल्कुल
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है, जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी, उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी, लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
1: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बाराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं, यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है, और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा,
0: नहीं
1: ये
0: खड़ा
1: सब
0: है,
1: भी चीजें होती
0: बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल,
1: और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
0: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना,
1: हाँ
0: हर चीज प्रोवाइड कराना,
1: बिल्कुल।
0: हर पूरा एक
1: और
0: जिम्मेदारी
1: बड़ा
0: बन
1: मजा भी
0: जाती
1: आता
0: थी।
1: था कि भाई
0: हाँ
1: अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गरम क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं
0: मिल
1: परसा
0: रहा
1: जा रहा है,
0: है,
1: तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे
0: चूहलबाजी भी होती
1: चूहलबाजी
0: थी।
1: टाइप की भी
0: हाँ
1: होती थी, तो बड़ा
0: बिल्कुल
1: यादगार दिन है वो। अब
0: बिल्कुल,
1: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
0: हाँ, अब
1: सब,
0: वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि
1: हाँ
0: होटल भी दूर दूर होते हैं
1: बिल्कुल
0: और अभी कई चीजें बदल गई हैं,
1: बदल गई,
0: वो
1: होटल में एक साथ
0: चीजें,
1: खाना
0: शादियां
1: खा
0: भी
1: रहे
0: होटल
1: हैं
0: में हो गई हैं, घरों
1: जी
0: में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहां बैठकर गीत गाए जाते थे,
1: बिल्कुल
0: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
1: सारे
0: जाते थे,
1: कार्यक्रम।
0: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं
1: लेकिन मुझे
0: जिसका।
1: तो वो जनवासे वाले दिन बहुत याद आते हैं
0: बिल्कुल याद
1: तो
0: आते हैं।
1: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर
0: हाँ फिर
1: बाकी
0: बात
1: संदेश
0: करते हैं,
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए, तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो
0: कैसे
1: चुके हैं।
0: हुए
1: बाद में
0: हैं?
1: जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही
1: सही
0: कहा।
1: बात
0: हाँ,
1: है।
0: मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा, यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासे के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं हैं। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है, पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मजा था।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही
1: जी
0: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले

0: जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, हाँ, जी, तो वो तो किसी और का बगीचा है।
0: हाँ, हाँ,
1: अब आम लगे हैं,
0: हाँ,
1: अब बराती लगे तोड़ने में,
0: हाँ, हाँ,
1: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
1: जी
0: आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
1: जी
0: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए। ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: लखी सहेली।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा फिल्म ओ माय गॉड बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान

0: क्या बात है बांसुरी की, इस
1: धन्यवाद।
0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है।
0: जी
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट। और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो
0: बात
1: थैंक
0: है,
1: यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट
0: अपने ही
1: फील।
0: परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बैक।
0: यहां एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी
1: पंडित अमरनाथ
0: गायक
1: जी,
0: पंडित अमरनाथ जी से
1: जी नहीं,
0: अलग हैं।
1: अलग हैं, बांसुरी वादक
0: जी बिल्कुल,
1: पंडित
0: बांसुरी
1: अमरनाथ जी,
0: वादक पंडित
1: बांसुरी
0: अमरनाथ
1: वादक
0: जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से
1: जी
0: भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की,
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित

0: राग भी नहीं थे जिसमें से, कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं। अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है।
1: जी
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है।
1: और इन
0: उन
1: रागों में
0: पे
1: वाद्य वृंद
0: वाद्य
1: बनाना
0: वृंद बनाना, वो भी
1: और
0: उनके
1: भी बड़ा
0: चलन के
1: काम है।
0: आधार पे।
1: जी
0: अब सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ
1: ये मायने रखता
0: अस्सी
1: है।
0: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने हैं।
0: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं। उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं। और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
1: अच्छा,
0: गामा पादा,
1: दोनों नोटेशन कर देते वो।
0: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे, वो हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
1: जी,
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम 3 भाई हैं और 2 म्यूज़िक में हैं, 1 म्यूज़िक में नहीं है। तो
1: जी
0: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे। तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई।
0: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
0: वो निकल ही जाता है बचपन में।
1: तो जस्ट
0: बचपन ऐसा होता है
1: लाइक
0: ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: हाँ, कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
0: अभी आर्टिस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
1: जी
0: और भी बदमाश
1: और
0: होता
1: भी।
0: है।
1: तो आप क्या कारनामे करते
0: हम लोग करते थे बचपन में काफी।
1: शर्मा रहे बता
0: हाँ, थोड़ा सा
1: रहे
0: शर्मार हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी से
0: बहुत
1: फिल्में
0: चुराए,
1: देखी है।
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
1: ओहो
0: को भी थोड़ा परेशान किया है।
1: थोड़ा
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज
0: घर
1: दी।
0: शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया
1: अरे बाप रे।
0: था।
1: फिर
0: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता
1: लेकिन
0: दूं,
1: किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
0: आपने
1: खतरनाक
0: पकड़
1: वाला किया
0: लिए,
1: होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे। मैं
1: जी।
0: बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने। इसको कर्मा बोलते।
1: अच्छा वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ,
1: जी
0: तो बदमाशी की है सर।
1: हाँ।
0: हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: जी
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था।
0: बहुत ज़्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज़्यादा। उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे
1: कहीं और पहुंच
0: नहीं।
1: गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए,
1: जी
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं बचपन में।
1: हाँ।

0: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या
0: तो
1: हाल
0: बाप
1: होता?
0: रे, दुनिया अलग और मैं
1: कितना
0: अलग।
1: सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
1: जी
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं हैं। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
1: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है। जी

अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की

0: कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की, पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है, उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने, मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से, मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है,
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी
0: ये
1: होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो, गजब
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय,
1: जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और
1: जी,
0: इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली।
0: वो पार्ट थे उसके,
1: ओके
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के। और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे
0: शहनाई छोड़ी नहीं, उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने,
1: फौज में होते हुए भी।
0: हाँ
1: वाह वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में,
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर, कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी
0: हमारी, ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से,
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और
1: जी
0: यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: जी
0: नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं,
1: जी जी
0: पंचम हम
1: बिल्कुल
0: होल यूज नहीं
1: यूज
0: करते
1: नहीं
0: हैं।
1: करते हैं।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी,
1: अद्भुत
0: उनका
1: बांसुरी
0: आशीर्वाद
1: है
0: है।
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा
1: वाह
0: मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे, तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के, सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात, आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुरों से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा ब मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के,

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें

0: अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर. ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ.
1: जी जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया. 7:30-8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए. 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके. उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे.
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे.
1: अरे गजब.

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से, 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं, अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12, 1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से, आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी लाख जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली, मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल।
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ, और एक साज की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी

0: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
1: जी,
0: का।
1: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं,
0: जी
1: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का कि
0: जी
1: ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
0: जी जी
1: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे, इसको
0: जी जी जी
1: ऐसे बजाते हैं।
0: समझ गया।
1: देखिए, तो एक होती सीधी बांसुरी, आपने
0: हाँ,
1: देखी होगी, ऐसे
0: और
1: शहनाई की
0: ये
1: तरह बजाते हैं।
0: जी जी जी
1: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
0: जी
1: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको
0: हमेशा।
1: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
0: हाँ
1: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
0: जी
1: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का होल है
0: जी
1: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
0: उस तरह के।
1: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना, ग्रीडीनेस
0: जी जी
1: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग।
0: जी
1: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
0: जी बिल्कुल।
1: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ
0: हाँ बिल्कुल,
1: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ही नोट
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल है
1: ठीक है,
0: आखिर में।
1: ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
0: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
1: हमने तो बचपन से देखा है,
0: जी।
1: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके, अगर हो पा रहा है, तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
0: आप माध्यम है
1: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
0: जी।
1: आप भगवान नहीं हैं। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है, वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
0: बहुत सही।
1: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
0: जी
1: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
0: कोई बात नहीं, तो
1: इसका
0: आप
1: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
0: जी, तो आप
1: ये
0: अपनी
1: मैं लाया
0: कृष्णा
1: इसलिए
0: बांसुरी
1: हूँ,
0: बजाइए
1: मैं
0: जी,
1: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
0: साथ
1: मेरे, हाँ
0: चले।
1: मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
0: वाह
1: हमेशा,
0: क्या प्यारी बात
1: हाँ
0: है
1: ये कि हम, मेरे फ्लूट किट में रहता है।
0: जी।
1: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है,
0: जी
1: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
0: हाँ है
1: है ना।
0: जी।
1: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
0: जी।
1: पिताजी का भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। अब
0: जी
1: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है,
0: बिल्कुल सही
1: वो
0: है
1: देखना पड़ता है।
0: जी।
1: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
0: हाँ
1: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
0: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते
1: मैं
0: हैं
1: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
0: जी।
1: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन
1: साहब ने। वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी,
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है,

0: पारसजी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी।
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी
1: एक बच्चा

0: जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
1: शिशु
0: रहता है,
1: होता है जब वो।
0: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
1: जी
0: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
1: वाह वाह वाह।
0: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
1: बाप रे, इतनी कम उम्र में
0: हाँ, और वही
1: परफॉर्मेंस।
0: राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
1: जी,
0: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ
1: वो
0: मैंने,
1: उम्र भी बहुत छोटी थी
0: हाँ काफ़ी छोटी थी। फिर
1: जब
0: उसके
1: आप।
0: बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ
1: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक
0: सर,
1: गजब।
0: वो ये आशीर्वाद है,
1: जी,
0: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं उनके
1: जब
0: सवाल भी
1: पीने
0: वैसे ही।
1: जाई
0: जी
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी
0: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से, मतलब सुनने में और करने, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आई मीन रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक
1: बिल्कुल
0: पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्यौहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज़्यादातर,
1: और वो ठेठ
0: ठेठ
1: बनारसी।
0: बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
1: जी,
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
1: हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
1: जी
0: और तब
1: जी
0: का सुना हुआ है,
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है, और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: हुलिया आई रे कन्हाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था, तो फिर ऐ दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ
1: फिल्म का
0: रजिया सुल्तान,
1: गाना।
0: तो कितना कमाल गाना है वो,
1: बिल्कुल।
0: हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा।
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी, फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा,
0: बहुत शौक,
1: क्या बात
0: एंड
1: है।
0: आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम,
1: तो
0: यस,
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था,
1: अच्छा।
0: ऑलराउंडर ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर, लाइक अ शोएब अख्तर,
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है तो अभी क्रिकेट देखने का

0: मिल पाता है
1: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
0: जी।
1: नहीं।
0: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
1: विरोध ये था कि अब जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
0: खेल रहे हैं तो फिर
1: फिर
0: बस
1: खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
0: डरते डरते।
1: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया कहाँ।
0: हाँ,
1: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
0: बस
1: ही गए बस।
0: जुनून के तहत खेल
1: हाँ,
0: रहे हैं।
1: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
0: उनके
1: जैसे
0: मुकाबले
1: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, अब उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
0: ये
1: मजाक।
0: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
1: हाँ,
0: होगी।
1: महंगी पड़ती थी।
0: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
1: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
0: इशारा
1: दिया था,
0: किया।
1: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
0: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
1: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
0: फिर वापस ले आए।
1: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
0: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते।
1: हाँ, स्टूडियो चलते ना
0: स्टूडियो
1: तो
0: चलते।
1: मजा
0: आकाशवाणी
1: आता
0: के गलियारों से जुड़ी यादें बताई।
1: है।
0: पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
1: हाँ, वहां पे
0: उनके
1: क्या,
0: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
1: जी हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
0: अच्छा, हाँ
1: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
0: हाँ
1: जब हम उनके साथ जाते थे, तो वो पेंशन के लिए जाते थे
0: जी।
1: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त। तो उनके साथ जाने का एक अलग मज़ा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था तो उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
0: जी।
1: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए, तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है,
0: हाँ, कंपोजिशन।
1: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
0: बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या होता था सर, कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ, तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार, सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना, सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था, वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाज़िर जवाब भी समझ में आती थी,
0: जी
1: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
0: जी,
1: तो पूरा एक हमारा चक्र घूम
0: चक्कर
1: जाता
0: लगता है।
1: था। तो वहाँ फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक

0: जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस
0: म्यूजिक,
1: अकॉर्डिंगली.
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या बात
0: तो
1: है.
0: वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था उनके, जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल.
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज़्यादा फीलिंग से ज़्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए
1: इतने सारे लोग
0: इतने
1: हैं.
0: सारे लोगों के बीच में। तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज़्यादातर,
1: गजब. यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था.
0: वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

तक रहोगे दूर कि दिल की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही हैं फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में। सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

अब इतना भी न तरसाओ कि तुम्हारे नाजो अंदाज की तुम्हें कसम है। खोल दो राज और बोल दो जुबां से कि हम ही तुम्हारे सनम है।

रात ये हो जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत, आती है तो आ जाए मौत बेशक, कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा

घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। IPL क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बच्छर पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है प्रधानमंत्री ला दिन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए और राज्य शासन हा ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई की रही छुट्टी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बच्छर पूरा हो गए है। ये मौका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है प्रधानमंत्री ला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में बधाई दीन है। मुख्यमंत्री कहने की प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई में भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में पहुंचा थे। श्री शाह कहने की पाछू 12 बच्छर में प्रधानमंत्री हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावना ला केंद्र में राखत ये सुनिश्चित करे है कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनके तक पहुंचाए। ओमन कहने की गरीब किसान माइलोगिन युवा और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए कि जौन संकल्प प्रधानमंत्री लीन है वो आज देश के हर एक जगह दिखाई देवत है। राज्य सरकार हा नगर पालिका और नगर पंचायत के समग्र विकास पर आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करे के घोषणा करे है। योजना के पहली चरण में प्रदेश के 32 नगरी निकाय के चयन करेगी है। एमा बस्तर सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 और बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। एमा सड़क जल आपूर्ति ड्रेनेज परिवहन पार्क आवास ई गवर्नेंस स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्र समेत नागरिक सुविधा के विकास करे जाही। योजना के तहत काम के चुनई और निरीक्षण पर संभाग स्तरीय समिति के गठन करे गए है जौन मला 15 दिन में कार्य योजना तैयार करे के निर्देश दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कहने की आदर्श शहर समृद्धि योजना प्रदेश के शहरी विकास ला नवा गति और नवा दिशा दे के काम करही। प्रदेश में हुआ खरीफ सीजन के तैयारी ला देखत मुख्यमंत्री विष्णु देसाई किसान मन के हित में निर्देश दे है। उमन कहने की ट्रैक्टर

0: ट्रैक्टर ले जुताई और सिंचाई पंप बर किसान मन ल जरूरत मुताबिक डीजल के व्यवस्था सुनिश्चित करे जाए जेखर ले खेती किसानी के काम प्रभावित झन होवय। खबर के मुताबिक राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरुपयोग ल रोके बर ड्रम और जेरकिन में ईंधन वितरण में लगे रोक में किसान मन ल छूट दे गए है जेखर ले खरीफ काम बाधित झन होवय। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। मिले खबर के मुताबिक श्री सिन्हा बिलासपुर में राखे गए भारतीय जनता पार्टी के दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होए बर गए रहिन। ये दौरान उखर तबियत बिगड़े में ओमल्ला बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराए गईस जिहां डॉक्टर मन ओमल्ला मृत घोषित कर दिन। रूप नारायण सिन्हा लंबा बेरा ले भाजपा संगठन ले जुड़े रहिन। उखर निधन में मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह समेत भाजपा के बड़का नेता माना शोक जताया है। राज्य शासन ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के जम्मू कार्यालय विभाग और सरकारी संस्थान मन में अब 27 के जगह 28 मई के छुट्टी रही। ये फैसला चांद दिखे के संभावित तारीख और तिहार ला ध्यान में राखत ले गए है। राज्यपाल रमन डेका आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के समीक्षा बैठक लेन। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदुओं पर चर्चा करेगी। राज्यपाल विशेष पिछड़ी जनजाति मन पर मंजूर करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के काम ला जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। ओमन जनजातीय क्षेत्र के रद्दा के खराब स्थिति में नाराजगी जतावत अधिकारी मन ला गुणवत्ता के संग सड़क बनाए बर कहें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। राज्य शासन है नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसर विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ स्थापित करे ला मंजूरी दे दे है। एकर तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डहर ले 10 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के निर्माण करे जाही। नवा रायपुर में बनैया ये विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात ला बढ़ावा दे के संगे संग नवा निवेश आकर्षित करे और छत्तीसगढ़ ला वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला ले जोड़े में विशेष भूमिका निभाही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय कहिने कि सेमीकंडक्टर तकनीक भविष्य के जरूरत है। उमन कहिने कि नवा रायपुर में राज्य के पहली सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित होए ले छत्तीसगढ़ के तकनीकी भविष्य की नींव मजबूत होही संगे संग युवा मन ला रोजगार घलो मिलही। राज्य सरकार बस्तर संभाग के जिला में चलत बांचे 506 बिना भवन के आंगनबाड़ी केंद्र मन पर भवन मंजूरी के कामला तेज कर दे है। मुख्य सचिव स्तर में 516 मई के रखे गए समीक्षा बैठक में बस्तर संभाग के हरेक ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी भवन निर्माण ला शासन के प्राथमिकता बतावत संबंधित जिला कलेक्टर मल्ला निर्देश जारी करे गए है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर हरेक भवन पर 11,69,000 रूपया की राशि निर्धारित करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय कहने कि सरकार के लक्ष्य नक्सल मुक्त घोषित जिला मन में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कराना है। उमन अधिकारी मल्ला निर्माण कामला गुणवत्ता के संग करे के निर्देश दीन है। बीजापुर जिला के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आगी लगे ले करीबन 10 करोड़ रूपया ले ज्यादा के तेंदुपत्ता जल के राख हो गए। ये घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर ला करीबन 2-3 करोड़ रूपया के नुकसान हुए है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी बताएंगे कि गोदाम में 8 फड़ में राखे गए तेंदुपत्ता में काली आगी लग गए। उन्होंने बताएंगे कि घटना की जानकारी मिलते ज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संगे संग बड़का अधिकारी मौका में पहुंचे फिर अभी आगी लगे के कारण के पता नहीं चल पाए। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मन जांच में जुट गए है। मिले खबर के मुताबिक करीबन 27,400 स्क्वायर फीट में फैले ये गोदाम में लगे आगी में 24 घंटा के बाद घलो काबू नहीं पाए गए है। बिलासपुर पुलिस है डिजिटल अरेस्ट के मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। दोनों आरोपी मन एक झिन सियान माइलोगिन ला आतंकवादी संगठन के

0: आदमी बता के आने आने खाता में 1,04,00,000 रुपया ले ज़्यादा के पैसा जमा करा ले। पुलिस दोनों आरोपी मला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। आरोपी मंडहार ले बउरे गए 900 आने आने बैंक खाता के पता चले है। ये जम्मो खाता में कुल मिला के 30,00,000 रुपया जमा है। जिला होल्ड करवाए गए है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। ये महोत्सव में कृषि मंत्री रामविचार नेतामहा किसान और आम उत्पादक मल्ला संबोधित करही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सामला तत्वाधान में राखे गए ये महोत्सव में आम के आने किस्म के प्रदर्शनी लगाए जाही। प्रदर्शनी हर दिन मझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक लोगन मन पर खुला रही। अब थोड़ी समाचार सार में पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलोग्राम के बढ़ोतरी करेगी है। नवा कीमत आज ले लागू हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के टीम है मनेन्द्रगढ़ चिनमिरी में बिजली विभाग में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता और लाइन मैन ला 9,500 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। उन्हें बेमेतरा में एसीबी है जमीन के बटांकन और खाता विभाजन करके ऋण पुस्तिका बनाए के एवज में रिश्वत मांगे के आरोप में पटवारी ला गिरफ्तार करे है। अकलतरा पुलिस है पोस्ट ऑफिस में पदस्थ सहायक डाकपाल ला खाता धारक मन के खाता ले 19,21,000 रुपया के गबन के आरोप में गिरफ्तार करे है। और रायपुर पुलिस है कोलकाता और हरियाणा में दबिश दे के आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगैया 26 आरोपी मला गिरफ्तार करे है। इखर तीर ले 17,00,000 रुपया नगद 4 पहिया गाड़ी समेत आने आने सामान बरामद करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ला आज 12 बछर पूरा हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है प्रधानमंत्री ला दीन बधाई। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा के आज निधन हो गए। और राज्य शासन है ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौका में घोषित छुट्टी में बदलाव करे है। 27 के जगह अब 28 मई के रही छुट्टी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 MHz पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। प्रस्तुत है हमारा लोकगीत कार्यक्रम लोक सुर। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ त्रिलोक साहू। आइए पहले सुनते हैं अनीता वासनिक और लता खापड़े की आवाज़ों में ये लोकगीत। इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है हमारे इन साथियों ने। पलारी रोहांसी से डगेसर राम साहू, नूतन साहू, गौरव घनश्याम साहू। शीतल नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी और ओजल वर्मा। कन्यावाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीना सोनवानी और गीतिका। रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे। पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान। ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और रेखा वर्मा। करीबदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और शारदा निर्मलकर। शंकर नगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस, कावेरी विनीता और लेखमणि बैस।

लीजिए अब सुनिए भगत साहू और साथियों के स्वरों में ये गीत। फरमाइश है हमारे इन साथियों की, नरसिंहा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना और अरुणा यादव, संतोषी नगर रायपुर से अनुराग, अभिषेक, अनामिका और प्रवीणा साहू, मगरडोल से पुनुराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री और राजवी साहू, बाजारपारा बेमित्रा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल, सुभाष वार्ड भाटापारा से अजय कुमार यादव, अमित यादव, गिरीश और युवान यादव, अमलीपंदर से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता, धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांत मिश्रा, अर्चना और धनंजय मिश्रा, मोपका भाटापारा से दयालु राम वर्मा, तेज राम वर्मा, सहदेव राय और

लोक सुर में आप सुनिए अनुज यादव और रेखा जलक्षत्री की आवाज़ों में ये रचना। इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है हमारे इन साथियों ने, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, हेमलता सारथी, पूर्णिमा और कमलकांत सारथी, बिलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार और चंद्रकला, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री और ऋचा देवांगन, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा, भाटापारा से नारायण यदु, पूर्णिमा यदु, राकेश और आरती यदु, ग्राम सिरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई और राजेंद्र कुमार, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, अशरफ खान, अयान और अल्फैज खान, हथनीपारा भाटापारा से चुआराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी और दुर्गेश्वरी वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, शिवम और सतीश।

आइए अब सुनते हैं गुड्डू देवांगन और आरती बारले की आवाज़ों में ये लोकगीत। इस गीत के लिए फरमाइश भेजा है हमारे इन साथियों ने, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू और कोमल यादव, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रिजक, के आर साहू, गणेश और अश्वनी वर्मा, नवागढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा और दामिनी वर्मा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा, ग्राम खट्टी से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कमलेश साहू और हिंगेश्वरी साहू, महावीर वार्ड भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती यादव, लक्ष्मी और ईश्वरी यादव।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुसुईया मानिकपुरी और नवल दास मानिकपुरी के स्वरों में ये गीत। गीत के लिए फरमाइश भेजी है हमारे इन साथियों ने, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले, राजदीप, राशि और शीतल, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, सिमगा से प्रदीप जैन, सविता जैन और देवेंद्र जैन, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री और वैष्णवी, अरमरी खुर्द दुर्ग से चुरामन लाल वाडे, जैनी वाडे, विवेक और नेहा वाडे, धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश और किरण, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, दिव्यांश और बंशीलाल श्रीवास्तव।
1: राजा।

0: लोक गीतों का कार्यक्रम लोक सुर अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 101.6 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:48 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी इस समिति में जनगणना आयुक्त के साथ सेवानिवृत्त आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और डॉ समीका रवि को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक तरीके से होने वाले डेमोग्राफिक बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बिगड़ी चुनौती होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, निर्णायक और जन केंद्रित नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश किया है।
6: 12 वर्षों तक उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर गरीब कल्याण योजना चलाकर सारे गरीबों के लिए नए भारत का निर्माण उन्होंने किया है।
5: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रालय में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद विमानतल से सीधे मंत्रालय पहुंचे और इस बैठक में शामिल हुए। राज्य शासन ने नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित दूसरे विषय आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। नवा रायपुर में बनने वाला यह विशेष आर्थिक क्षेत्र राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने और छत्तीसगढ़ को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के समग्र विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के 6-6 तथा बिलासपुर संभाग के 9 और दुर्ग संभाग के 5 निकाय शामिल हैं। इसके तहत सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, परिवहन, पार्क, आवास, ई गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक और हरित क्षेत्रों सहित नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत कार्य चयन और निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है,

0: जिन्हें 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टरों से जुताई और सिंचाई पंपों के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि खेती किसानी के कार्य प्रभावित न हों। गौरतलब है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रम और जरीकेन में ईंधन वितरण पर लगे प्रतिबंध में किसानों को आवश्यक छूट दी गई है जिससे खरीफ कार्य प्रभावित न हो। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का आज निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा बिलासपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूप नारायण सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कराने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरी ईद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया है। इस घटना में गोदाम के स्ट्रक्चर को करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बस्तर वित्त के मुख्य वन संरक्षक आलोक तिवारी ने बताया कि गोदाम में 8 फड़ में संग्रहित कर रखे गए तेंदुपत्ता में कल आग लग गई। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम जांच में जुट गई है।
1: आज समिति के यहाँ पर लगभग 50,000 बोरे के आसपास यहाँ रखे जाने थे और अभी ट्रांसपोर्ट जो हुआ था लगभग 25,000 के आसपास तक हो पाया था। तो 25,000 बोरे के लिए हमारे सारे प्रभारी यही थे। यहाँ पे किसी तरह का कोई आग से खाना बनाने का कोई बिजली कनेक्शन, ये सारी चीजें नहीं रखी जाती यहाँ पर। तो ये पूरी एहतियात बरती गई है, लेकिन अब कारणों का पता लगाया जाएगा। अब इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो आग बुझाने की कार्रवाई अभी खतरे से हो रहा है, इसके बाद हम लोग फिर पूरी तरह से इसमें जांच में लगेंगे।
0: जानकारी के अनुसार करीब 27,400 स्क्वायर फीट में फैले इस गोदाम में लगी आग पर 24 घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री चौहान के सार्वजनिक जीवन, आत्मीय संबंधों और कार्य अनुभवों पर आधारित है। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री चौहान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुंचाना एक प्रेरणादायी पहल है। बिलासपुर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला को आतंकवादी संगठन से संलिप्तता का डर दिखाकर अलग अलग खातों में 1,04,00,000 रुपए से अधिक जमा करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ठगी के लिए प्रयुक्त 900 अलग अलग बैंक खातों का पता चला है। इन सभी खातों में कुल मिलाकर 30 लाख रुपए जमा है, जिसे होल्ड करवाया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित

इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करणों और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 29 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की

0: मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नई दर आज से लागू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा में नवनिर्मित मित्र मिलन चौपाटी का लोकार्पण किया और राज्य के विभिन्न जिलों में सीएम हेल्पलाइन योजना के संबंध में अधिकारियों को आज प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। बिलासपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बीजापुर जिले के इटपाल स्थित एक तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता जलकर खाक। और राज्य में बकरीद का अवकाश कल के बजाय परसों 28 मई को रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह नौ बजकर 55 मिनट पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:07 को है विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। अब हम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में मैं प्रीति शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे देशभक्ति गीत के साथ। तो पहला गाना हमने लिया है फिल्म होटल मुंबई से। इसे गाया है मिथुन, बी प्राग और सुनिधि चौहान ने। गीत संगीत मिथुन का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में है। गीत रचना निदा फाजली की है, संगीत उषा खन्ना का। फिल्म का नाम आप तो ऐसे न थे।

अभी आपने मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजों में हम फिल्म का गाना सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में यादों की बारात फिल्म का गाना, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शायरा अपूर्वा के लिखे इस गाने के साथ। स्नेहा शंकर ने इसे गाया है, संगीत अभिजीत श्रीवास्तव का है।

अभी आपने नेहा कक्कड़ की आवाज में जानी और ललित सेन का लिखा गीत सुना। संगीत तनिष्क बागची और ललित सेन का था। आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज, गीत रश्मि विराग का, संगीत पायल देव का।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण सबरंग।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र त्रिलोक साहू का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ऐसा दौर जो हर किसी की जिंदगी का प्यारा हिस्सा होता है, एक ऐसा समय जहां छोटी छोटी बातों में खुशियां मिलती थी और हर दिन एक नई कहानी जैसा लगता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम बचपन की। बचपन यानी मासूमियत, शरारत और बेफिक्र जिंदगी का दूसरा नाम। वो दिन जब खिलौने ही हमारी दुनिया होते थे, बारिश में भीगना त्योहार लगता था और छोटी सी टॉफी भी बड़ी खुशी दे जाती थी। क्योंकि बचपन की गलियां बड़ी प्यारी होती है, जहां हर बात निराली होती है, न चिंता होती है न डर कोई, बस हंसी और खुशहाली होती है।

श्रोताओं, बचपन केवल उम्र का एक हिस्सा नहीं है, यह दिल की सबसे खूबसूरत याद है। स्कूल की घंटी, दोस्तों के साथ खेलना, माँ की डांट, दादी की कहानियाँ और गर्मी की छुट्टियाँ, ये सब मिलकर बचपन को खास बना देते हैं। कभी-कभी जब जिंदगी की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो इंसान फिर से अपने बचपन को याद करने लगता है। आप भी करते होंगे, क्योंकि बचपन में सपने बड़े होते थे, लेकिन दिल बहुत हल्का।

दोस्तों, बचपन केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो उम्र बढ़ने के बाद भी हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है। ये वो समय होता है जब छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिलती है। बिना किसी चिंता के दिन गुजरते हैं और हर नया दिन एक नए खेल, नई शरारत और नई मुस्कान के साथ शुरू होता है। बचपन की दुनिया कितनी प्यारी होती है, न किसी बात का घमंड, न हार का डर और ना ही भविष्य की चिंता। मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ दौड़ना और स्कूल की घंटी का इंतज़ार करना, यही तो बचपन की असली खुशियाँ होती थी।

कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। साथियों, समय के साथ हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन की भागदौड़ में कहीं ना कहीं अपने अंदर के उस बच्चे को खो देते हैं। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, सपने बदल जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता दिखाई देने लगती है। लेकिन दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि बचपन हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाता है। बचपन सिखाता है कि खुश रहने के लिए बड़ी चीज़ों की नहीं बल्कि सच्चे मन की ज़रूरत रहती है। यह हमें सिखाता है गिरकर फिर उठना, बिना डर के सपने देखना और हर पल को खुलकर जीना। आज के समय में बच्चों पर पढ़ाई और प्रतियोगिता का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि बच्चों को केवल किताबों की शिक्षा नहीं बल्कि प्यार, संस्कार और खुशहाल माहौल की भी ज़रूरत है। उनका बचपन हंसी, खेल और रचनात्मकता से भरा हो।

यदि हम अपने जीवन में बचपन की कुछ बातें फिर से अपना लें, जैसे सच्चाई, मासूमियत, जल्दी माफ़ कर देना और छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, तो शायद हमारी वर्तमान ज़िंदगी और भी सुंदर और खुशहाल बन सकती है। तो आइए श्रोताओं, आज हम एक छोटा सा संकल्प ले ही लें। हम अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देंगे। हम खुलकर मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, सपने देखना नहीं छोड़ेंगे, मौका मिले तो छोटी मोटी शरारत करते रहेंगे और अपने जीवन को पूरे दिल से जिएंगे।

इन्हीं प्यारी यादों के साथ अब अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त त्रिलोक साहू को। फिर होगी मुलाकात एक नए रंग, नए विचार और नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सबरंग कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 होने को है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अब हम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।
1: भाग आप सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना। इसे गाया है अभय जोधपुरकर ने, गीत इशात कामिल का है, संगीत अजय अतुल का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले

0: छह माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
4: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
5: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
4: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर

0: AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 100

82 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय

हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों से। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म फना से, आवाज़ें शान और कैलाश खेर की है। गीतकार हैं प्रसन्न जोशी और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: लीजिए अब सुनिए मोहब्बते फिल्म का ये गीत, आवाज़ें उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की है। आनंद बख्शी के इस गीत के लिए संगीत दिया है जतिन ललित ने।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में मैं हूं ना फिल्म का एक गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

आर डी बर्मन के संगीत से सजी फिल्म तेरी कसम का गीत आपको सुनवा रहे हैं। स्वर दिया है अमित कुमार ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

चित्रपट संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में समीर का लिखा गीत। धुन बनाई है संजीव दर्शन ने और फिल्म का नाम है मन।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म अवतार का गीत। गीत है आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अब हम मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: केंद्र से रिले करते हैं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो ना हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झरती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटकेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सी

0: सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
3: सुनिए
4: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभा

0: कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji